महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी बताओ इसी प्रसंग को बीच में अब यो विश्व ब्रह्मांड उत्पादन को विषय को लाई प्रश्न कर भगवान यो विश्व ब्रह्मांड कसरी उत्पादन भयो इसदि पछाड़ी बाट सृष्टि को प्रकरण में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र यो चार जात को प्रकरण में व्याख्या भिन्न भिन्न मत को प्रभाव बाट इनको विषय में प्रकाश पारी बस कि विनती करने वाला राजा परीक्षित लाई सुखदेव स्वामी ने बड़ा गंभीर वाणी में आपको भाषा प्रस्तुत करते हुए संबंध को कथा यह सद्या जय बोलो श्रीमद भागवत महाप्राण को